0: भल्ला भरना
1: एक आई
2: एक आई
0: नाय बेंडल
2: किरा
0: के
2: तुम गे जागो
0: हां इतने थिंग वारबेल
1: ये बात
0: हां बात तू ले या ए ना इतने लोग नमक कोयल अलंग सी दाइन अल दी दाका दाइन डोंगर जोंगले नमक दो कोयल अलंग गिस दुरिक अर्दम पियाना दुरी नस देन अल दी पिया मरंग माइंडिंग अस केइन ना की इदा करीब कान के जम क्वा नमक अल क्विन सोला सी ट्रिक पुरसानी ने गे दोंग कने
1: ए कैन के जम क्वा ओसई की बरे ने बरफतई असन कैदी दी नस सुरंगा सी केइमेल अलंग सी कैन जोरंग सुरसावा न केन तुले kabung nat kainka na kusenga na tuka kai
0: tole na namagal wo tibolo ko dogna se tiri kwa
2: e bara ka kilma songa gi simoi ato alki dan goren darale kainga azangal kaing orre kwasi a ingwa alan kilo tulen karge azang kaing uto tara azangal kamya azangal kaing branje ko gur
0: tole na ine namadok tiri karina dan tambulen dak dikel kam namagal kainga na dangal dingire njale keri

0: भाईला बरना
1: एक आई
0: नाय बेंदल
1: किरे काम
0: बोला के किरे आगे बा
1: तुमके जगह जागो
0: हाँ इतने थिंग वार बेल
1: ये बात
0: हाँ बात तू ले या ये ना इतने लोग नमक कोई लालन सी दायिंग अल्टी लगा दायिंग दोंगर जंगले नमादो कोई अलंगिस दूरी अर्धें प्याना दूरी नस दें अल्टी प्यान मरंग मैं दिंग ऐसा कहीं ना कि इधर करीब कहीं के जम कुआ नमक अल कुछ सोला सी त्रिक पुरसानी ने गिलों का ने
2: ये कहीं के जम कुआ उससे कि बोरे ने बरफताई असं कह दी न सुरंगा सी कहीं मिल अलंग सी कहीं जोरुंग सुरसवा न कहीं तुल्यंग कबूंग न कहीं का न कुसेंग न तुका कहीं
0: तोले ना नमक अल वो तीवर को लोग ने से त्रिक कुआ
1: ये बरा का किल्मा सोंगा की सिमोई अतो अलकी दें गोरें दारले कहीं असंगल कहीं और कुआसी Ainwa alang kilo tulang karige azang kaya utang tara azang kel kamya azang gal kaya barang zeko guru.
0: Tulay na ine nama dok itirik karin nadaan tumbleng dagdik kel kam nama gal kaya nga nadaan gal ding girin jale keri.